बाबा जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर है। जुत्ती ते सारे तारे की सारे अंबरां दे विचों जिन्ने भी प्लैनेट्स ने भी लाके ला दियो जरूर। प्यार मोहब्बत दे विच बंदा की कुछ नहीं कर सकदा है ना। जिवें प्यार मोहब्बत दियां तंदां जिहड़ियां थोड़े नाल जुड़ियां होईयां ने ओह दिन ब दिन जदों मजबूत हुंदियां ने सानूं भी खिच पैंदी है कि असीं भी मुड़ के थोड़े कोल जाइए ते थोड़े लई कुछ ना कुछ नवेकला लैके आईए। बिल्कुल अज लाइव ऑन लोकेशन साडी टीम पहुंची हुई है जी। सिद्धू साहब खुद पहुंचे हुए ने ग्रांड होम फर्नीचर ते। लोकेशन है 6685 टॉमकिन रोड। उत्थे पहुंचो जी। ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड सेल लगी हुई है। काफ़ी सारी बचत की जा सकती है। लाइव ऑन लोकेशन का फायदा यह होंगे कि पॉपअप लोकेशन जीडिया यह होंगे ने टाइम बीइंग वास्ते यह जो सेलां लगदिया ने उसका फायदा यही है कि कुछ चंद पैसे जड़े ने बच सकते हैं। वो फ्री गिफ्ट जड़े ने ज़्यादा मिल जाते हैं। सो जाके अज का दिन वधिया है जी। जिवें सिद्धू साहब दस रहे कि तुम पिकनिक वास्ते तैयारी खिंची हुई है तो जाते लंघते बढ़ते उधरले पासे गेड़ा जरूर लगा के आयो। की पता पसंद आ जाता है कुछ तो उस गिफ्ट जड़े ने वाह कमाल थोड़ा मिल सकते हैं जी। सो अपना लक जड़ा है अजमाया जा सकता है अज ग्रैंड फर्नीचर की इस सेल से। अगला नंबर थोड़ा देन जा रही है जी मनु शर्मा होना का कि थोनों पता है कि ओंटारियो ऑटो इंश्योरेंस में नवे चेंजेस जड़े ने आ रहे हैं। जुलाई तो बाद अपनी पॉलिसी रिन्यू कराने वाले ड्राइवर्स नू एक्सीडेंट बेनीफिट्स ते अदर कवरेजेस लई नवे फैसले न्यू डिसीजंस करने पास करने पै सकते ने। सो बट द क्वेश्चन इज कि तुसी समझदे हो कि ए बदलाव जिहड़ा है ए चेंज थोड़े ते थोड़ी फैमिली दी सेफ्टी उत्ते की असर कर सकता है जी। सिर्फ घट प्रीमियम देख के डिसीजन ना लियो। सही कवरेज होना उस तो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जे थोड़ी ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल आने वाली है या तुसी अपने घर की रिन्यूअल चाहते हो बिजनेस इंश्योरेंस लई बैटर कवरेज चाहते हो रेट्स बहुत अच्छे लभ रहे हो तो मनु शर्मा होरां दा नंबर तुसी जरूर लिख के रखो 289-952-9532 289-952-9532 is the number. इस नंबर ते कॉल की जा सकती है ते मनु शर्मा होरां दे नाल गलबात की जा सकती है। लो जी ANJ ऑटोमोटिव रिपेयर दा नंबर भी थोनू दे दिने। कहंदे कारा रिपेयर करदे आं असीं ते ऐसी नवी नवेकली कार बना दिंदे ते पता ही नहीं चलदा। प्रोवाइड कर रहे ने नवे समर टायर्स चेंज करदे ने टायर्स व्हील अलाइनमेंट करवानी होवे हर तरह दा सस्पेंशन दा काम करना होवे इंजन दा काम करवाना होवे ब्रेकां दा काम करवाना होवे एग्जॉस्ट दा काम करवाना होवे ऑयल चेंज करवाना होवे रस्ट प्रूफ करानी होवे गड्डी तां बस फिर ANJ ऑटोमोटिव रिपेयर। अच्छा जी जे इन्हां दे कोल जांदे हो ते एक प्लस पॉइंट ए है कि दे स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड पंजाबी। सो थोनू किते भी ऑड नहीं लगेगा कि हाँ जी मैं हुण उत्थे जाके किवें बोलांगा कि मेरे मेरी गड्डी च ए जिहड़ा है दिक्कत आ रही है। कई बार सानू लफ्ज लभदे नहीं है ना तो औखा हो जाता फिर बंदा कहिंदा छड्ड परा मैं इत्थे नहीं जाऊँगा मैं किते होर जाना तो सारे बेनीफिट्स छड्ड दिंदा। सो ANJ ऑटोमोटिव रिपेयर ते तुसीं गेड़ा जरूर लगायो 91 हेली रोड बोल्टन हाईवे 50 ते मेफील्ड दा इंटरसैक्शन है जी होम डिपो दे लागी है। नंबर नोट कर लेने 289-503-6726 नाल दी नाल दूजा नंबर 905-857-7596 इज द नंबर। इस नंबर ते कॉल करना बिल्कुल भी ना भुलियो।

बात है मित्रों, मरू मरू क्यों करना। बिल्कुल जिंदगी दित्ती है रब ने, सेहत वधिया, सब कुछ वधिया, ते मरू मरू क्यों करना। जिंदगी जियो खुल के, ते गलबात चल रही सी। बंदा उदास मन होवे ते किद्दां उन्नू वधिया खुश मिजाज बनाया जा सकदा, किद्दां उहदे मन नू होर भी दुरुस्त किया जा सकदा। ते कहिंदी आ गाने गुणे दे नाल भी, गाने सुन के भी हो सकदा है। कहिंदी आ जे तुसीं वॉक कर सको ना नेचर दे विच, खास करके ते पार्क विच जाके नेचर दे विच वॉक करो, उहदे नाल भी तुहाडा जिहड़ा मन है उह भी बड़ा सही हुंदा, तुहाडी नींद पूरी होवे उहदे नाल भी। ते खास गल जिन्हां दे घर आ, जिन्हां ने पैट रखे होए आ, जिन्हां दे घर पैट ने, कहिंदे पैट रखे होण दे नाल बंदे दा मन बड़ा सही हो जांदा। बंदा घर कुत्ता रखिया होवे, बिल्ली रखी होवे, बंदा उहदे नाल खेडदा है, सौ गल्लां बातां इधर उधर करदा है, ते उहदे नाल भी बंदे दा मन बड़ा सही हो जांदा। एक थैरेपी दा ही काम करदे आ घर दे विच जदों पैट्स होण। ते होर बहुत सारियां चीज़ां ने, तुहाडा की कहना है। 905-673-3337 एक ना बड़े ही शानदार मैं देख रहा सी सर्वे दे विच, ये चीज़ आई है। कहिंदी है बंदा ना उदास बैठा ते धक्के दे नाल ना उदा ही बस एक जाली समाइल नहीं होंदी, एक फेक समाइल, तुसी बैठे हो बस समाइल करनी है, तुहाडा उह हासा नहीं आ रहा, बस तुसी समाइल करनी है। कहिंदे हुंदा की है जिहड़ी जाली समाइल भी हुंदी है ना उहदे नाल तुहाडा मूड बेहतर हो जांदा। आराम नाल बैठे हो बस इदां ही समाइल वाला मूँह बना के देखो, ते उह तुहाडे चेहरे ते तुहानू उहदा अहसास हुंदा, तुहानू पता हुंदा भी हाँ यार मैं इदां ही फेक समाइल कीती है, पर इहदे नाल मेरे मूँह दे जिहड़े मसल्स है इहनां दे विच फर्क पै गया। करके देखियो, मैनूं पता कई बंदे हुण इस टाइम फेक समाइल कर रहे होणे ने सुण के, इदां इदां करके शीशे वल देख के, पर फर्क पैंदा। ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ।

0: से कभी बात बिनती चौपाई
1: हमें करो हाथ पे इच्छा पूर्ण होए जिसकी इच्छा रब चरण मन रहे हमारा अपना जाने को भी हमारे दुष्ट सदा तुम पाओ आंख बात दे मुझा सुखी बस है मोरो परिवार जीवत सिख सदा
2: कर तो हो तुम मैं मिलती दे पर सब

0: मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-455-7333 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: महादेव को कहते सदाशिव निरंतर।

करण्यासः ॐ ब्राह्मं मुष्टाभ्यां नमः ॐ ह्रीं कर्दनीभ्यां नमः ॐ ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः ॐ ह्रीं अनामिकाभ्यां नमः ॐ ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः अथ अङ्गन्यासः ॐ ब्राह्मं हृदयाय नमः ॐ ह्रीं शिरसि स्वाहा ॐ ह्रौं शिखायै वसतु ॐ ह्रीं कवचाय हुम् ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वसतु ॐ ह्रः अस्त्राय पट तथ ध्यानमेकरे वैरवहं वहन्तं करमालयाढ्यं दधानमाख्यामाद सुवर्णवर्णं पदीज्वलत्कुण्डलमाञ्जनेयम् ॐ नमो भगवते विचित्रवीरहनुमते प्रलयकारानप्रभाज्वलत्वतापवर्धदेहाय अञ्जनीगर्भसम्भूताय प्रकटविक्रमवीरदैत्य दानवयक्षराक्षस ग्रहबन्धनाय भूतग्रह प्रेतग्रह पिशाचग्रह शाकिनीग्रह डाकिनीग्रह काकिनीग्रह कामिनीग्रह ब्रह्मग्रह ब्रह्मराक्षसग्रह चोरग्रह बन्धनाय एहि एहि आगच्छागच्छ आवेशयावेशय मम हृदयं प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यं कथय कथय व्याघ्रमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय राजमुखं बन्धय बन्धय सभामुखं बन्धय बन्धय शत्रुमुखं बन्धय बन्धय सर्वमुखं बन्धय बन्धय लंका प्रसाद भंजन सर्वजनं मे वशमानय वशमानय श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं सर्वानाकर्षय आकर्षय शत्रून्मर्दय मर्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञया मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून् भस्मी कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रैं ह्रौं ह्रः फट् श्री विचित्र वीर हनुमते मम सर्व शत्रून् भस्मी कुरु कुरु हर हर हूं फट् स्वाहा एकादश शतवारं जपित्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री विचित्र वीर हनुमन्मारामः।

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। आप समर को एंजॉय कर रहे हो, अभी जिनके बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं उन सभी को उन बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। और अब अगर आप किसी भी किस्म की, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना है, आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कर सकते हो। और अब अगर आपने किसी किस्म का भी, आपको आपने कोलिजन का काम करवाना है, तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है, गोर रोड पे। और जानकारी के लिए टॉप चॉइस आप mastercollisiondepot.ca पे और mastercollisiondepot.com पे जाइए, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए। लंदन के इलाके में रहते हैं, किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो आप mastercollisiondepot पे जाइएगा। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो HK मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। उनकी टीम्स हैं बहुत सारी, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। और जानकारी के लिए अपना ट्रक बुक करने के लिए, मूविंग के लिए आज ही उनको कॉल कर लीजिए 416-524-8004-1652-46704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा पंजाबी का गीत सुनाती हूँ। फिल्म 1964 की थी, तो उसी का गाना आपको सुनाते हैं। आजकल बच्चों को छुट्टियां हो गई है, तो जरूर आप घूमने निकलेंगे। जुलाई फर्स्ट है, कैनेडा डे की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: मुड़के नहीं हो जमना मामा कर पंजाब की शहर।

बंटी लाल की बंटी बज गई जावड़ा पटियाले मोती बाग तो बारा दरी दे खड़ गया बिच बकाले तुरदा तुरदा पहुंच गया बाजार जुतियां वाले इधर मैं बरांडे वेके उधर वेके नाले की सारी दुनिया खुशे एक दूजे में जपिया पाके जोर भी कहते मांगे कहते मांगे मैं किसे ना पानी सुखिया हो गई शिकर पैर चलो इस तरह अगले शहर गड्डी चलती जल्दी आंदे आंदे शहर मुड़के नहीं यमुना मामा सरपंच।

फिर प्रिया हम ध्याने ना कोई जाने ना पहचाने कोई जराबा कोई स्वेटर कोई बुने बुनियाना आ गया दीगत गुंजा पिता तो मामा नैना चले पुत्रा अगले शहर चलती जाती आंदी जाती शहर मुड़के नहीं जमना मामा कर पंजाब।

जी हाँ, एक बार फिर। और अगर आप हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमेशा हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, तो आप कॉल कर लीजिए और हमें अपना ऐड दे दीजिए अपने बिजनेस की। तो 6477737640 पे आप कॉल कर सकते हो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए कनाडा डे आने वाला है, तो कनाडा की थोड़ी सी जो हिस्ट्री है वो आपके साथ थोड़ी आपको वो आपको नहीं शायद पता होती हैं, पता भी होती हैं और कुछ याद करा दी जाती हैं। तो इसीलिए आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप किचनर वाटरलू गोल्फ में आप घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप नसीब ठंड को कॉल कीजिए 519-542-1260। तो अभी आपके लिए बहुत बढ़िया सारी गाना आपने मैंने मैंने चुना है मौसम के से। अब आपको गाने सुनाएंगे। तो कनाडा के अबा में भी मनाया जाएगा, तो क्या होगा वहाँ पे बड़े शहर में वेडनेसडे को है कनाडा डे, तो इस ग्राफ में भी बहुत सारी इवेंट होंगी। तो शाम भी शो फ्रॉम द कैपिटल विद परफॉर्मर्स फ्रॉम मॉक्टन विनीपेग, आर्टिस्ट विल ज्वाइन देयर वॉइस एंड देयर टू सेट अवर लव फॉर अवर कंट्री एंड द प्राइड ऑफ कॉलिंग इट होम कैनेडियन हेरिटेज। तो बहुत सारे जो सिंगर होंगे एडम बॉल्डविन और बहुत सारे दूसरे सिंगर भी आएंगे, फायरवर्क्स भी होगा। तो कनाडा डे रैप्स अप, फायरवर्क्स होंगे शाम को 8 बजे और इवनिंग शो होगा 8 से 10 बजे तक। शहरों में कनाडा डे फायरवर्क्स होंगे, आप अपने शहर में अपने वेबसाइट पे जाकर के देखिए सिटी वेबसाइट, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके शहर में क्या क्या इवेंट्स हो रही हैं वेडनेसडे को कनाडा डे। तो फिर पार्लियामेंट हिल पे होंगी 10 बजे सेरेमोनियल गार्ड बैंड, 11 AM द रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स पाइप्स एंड ड्रम्स, 11 फिर वही मीट म्यूजिकल हॉर्सेज, 1:30 रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स एंड 2 PM to 3 PM 742 एयर कैडेट स्क्वाड्रन म्यूजिक प्रोग्राम्स, स्नोबर्ड्स एरियल शो। तो इसी तरह से ओटावा में तो इस तरह से सारा जो कनाडा डे की अलग अलग एक्टिविटीज होंगी। तो फिर अभी कनाडा डे में नियाग्रा फॉल में भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम होंगे, फायरवर्क्स होंगे। तो आइए अब प्रोग्राम को ले लेते हैं। के लिए बहुत ही बढ़िया गीत मैंने चुना है। तो होना तो अच्छे मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए। और आपको फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का आउटडोर फर्नीचर चाहिए और बारबेक्यूज, खास करके आजकल समर है, तो आप topchoiceelectronics.com पर जाकर उनकी जानकारी लीजिए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड ब्रैम्पटन में और ग्वाल्फ में भी उनकी लोकेशन है। तो अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका शर्मी और मैं हूँ आपकी होस्टिरा। तो आप अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए, और इस हफ्ते आपको एक टीम वाली है कनाडा डे की, तो इसलिए आपको बहुत बहुत कनाडा डे की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू कनाडा। और ये जो Who we are, first of all, Canada Day celebrates the anniversary of Canadian Confederation, which occurred on July 1st, 1867. On this day, the British North America Act joined the separate colonies of Nova Scotia.
1: Year after year, whilst they went up. Get up to $5 cash purchase bonus on other road models. Sun.ca for details.

पे हंसी आएगी, ये आएगी तेरे होठों पे हंसी आएगी। ज्ञान हो या दिल हो ये होगा, ये बेरुखी मेहरबानी बनेगी। देखना इतनी ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपने।

0: कहीं पहले तो लाज आती है, बाद में कोई मान जाती है।
1: जी हाँ, तो 1972 में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था निर्माण का, तो मालिक यहाँ तो उनका बहुत बढ़िया मूवी था, मैं थिएटर में जाकर किंगडम में देखी थी ये फिल्म, तो काफी सारी यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसी तरह आपने भी जरूर कहीं ना कहीं ये मूवी देखी होंगी, तो आपको वो सारा कुछ एक मूवी सी बन जाती है दिमाग में। तो अभी मैं बात कर रही थी कि हम कनाडा डे क्यों मनाते हैं। कनाडा डे सेलिब्रेट्स द एनिवर्सरी ऑफ कैनेडियन कॉन्फेडरेशन विच अकर्ड ऑन जुलाई 1867। ऑन दिस डे द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट जॉइंड द सेपरेट कॉलोनीज ऑफ नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक एंड द प्रोविंस ऑफ कैनेडा, नाउ ओंटारियो एंड क्वेबेक, इनटू अ सिंगल कंट्री नोन एज द डोमिनियन ऑफ कैनेडा। So originally called the Dominion Day, the holiday was renamed Canada Day in 1982. Beyond the historical milestones, Canadians celebrate the national holiday for several reasons. So ये main वजह है जिसकी वजह से हम इस दिन को मनाते हैं। तो ये जानना हमारे लिए, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, अपना देश को भी हम जानते हैं, अपनी भाषा को, अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये कनाडा एक ऐसा देश है यहाँ पे हम सभी को कि अपने को हम मेंटेन कर सकें और आगे बढ़ा सकें। तो अब आपके लिए कल्याणपुर का सुनाऊंगी, आप हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि कोशिश करते हैं कि सभी सिंगर्स को हो चुके हैं उनको हम याद करते रहें, और प्रेजेंट में जो इस वक्त हमारे साथ हैं उनकी भी हम कदर करें, उनको भी हम तो उनका भी हम कदर करें, उनके भी गाने हम सुनते हैं और सराहते हैं, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन जो लाइफ होती है मिलता है। तो आजकल जैसे लोगों के गाने पसंद हैं वो अभी कैसे गाए जाते हैं, तो बहुत सारे नए आ रहे हैं आगे, तो उनको भी हम जरूर गाने सुनेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। तो लेट्स गो टू दिस वेरी ब्यूटीफुल, मैं कोशिश करती हूँ आपको भी तो कम सुनने को मिलती है। तो आइए अब, अगर आपने कनाडा डे की आप अपनी सिटी में देखिए क्या क्या इवेंट्स होने वाली हैं।

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ ਪਿਸਤਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਫੋਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ ਜੋ G26 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 1850 ਐਲਗਨ ਰੋਡ, ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1165 ਤੇ 416-213-1165।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे क्या है कि उनका जो टर्नओवर है बहुत ज्यादा है, लोगों की लाइन लगी रहती है। वहाँ पे एक फायदा है आपको, वहाँ से आप कुछ भी खरीदेंगे आपको एकदम फ्रेश ही मिलेगा। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना है, टीवी लेना है, बढ़िया आउटडोर फर्नीचर लेना है, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-0045। मूव होना है तो आप मूविंग के लिए आप जा सकते हो, HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा, वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपका सामान मूव करते हैं। उनकी बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो आप अपना ट्रक बुक करने के लिए 416-524-7046-524-6704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। आपको कोलिजन का काम करवाना है, लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में गोर रोड पे मौजूद है, तो mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। तो आइए आपको सुनाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुमन कल्याणपुर और रफी साहब का बेटी।

0: जलवा।
1: जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने स्वादा पला। एक बार फिर से हैप्पी कनाडा डे, हैप्पी बर्थडे टू कनाडा। एंड आप सभी बुधवार को होगा तो छुट्टी होगी, आप खूब इंजॉय कीजिएगा अपने अपने शहर में जो भी कनाडा डे एक्टिविटीज होंगी। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने स्वादा पला। हैव अ वंडरफुल वीक एंड अ सेफ वन।

0: दुनिया बनाई न होती खुद।
1: जी हाँ, तो अब आपके वो ये गीत सुनाते हैं, रात नए थोड़ा सा नए वक्त सुनाते हैं, तो आपसे इजा लेते, तो एंजॉय द सॉन्ग।

0: CFRC.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: रंगमंच ते सत्रह चावां ते मल्हारां दा लोक रंग रेडियो प्रोग्राम पंजाबी रंग हनेरे नूं चानन दे रंगां नाल रोशनांदा पंजाब पंजाबीयत दे रंगां दी महका नूं वंडदा रेडियो प्रोग्राम पंजाबी रंग
2: सुनना जरूर हर शनिवार रात 11 बजे तो 12 बजे तक 530 AM ते अपने होस्ट चमकौर सिंह दे नाल।

हाँ जी जरा एक वेबसाइट नोट करो, afcgrocery.com। ए जी एशियन फूड सेंटर की ब्रांड न्यू वेबसाइट जिथो तुसी इंडो कैनेडियन ग्रोसरी मठियाईयां ताजियां सब्जियां फल फ्रूट इंडिया वाले भांडे सजावट का समान सारा कुछ जो स्टोर ते जाके देखना। हुण एशियन फूड सेंटर की इस वेबसाइट ते देखो $100 या इस तो ज्यादा दे ऑर्डर ते पाओ फ्री डिलीवरी इन ऑल GTA एरियाज, फ्री कर्बसाइड पिकअप अवेलेबल इन ऑल लोकेशंस ऑन सेम डे। विजिट afcgrocery.com।

0: हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की
1: यहाँ ये
0: स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA, चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर। विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर। 9057900560 स्टीवंस फर्नीचर, 2575 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट ब्रैम्पटन।
2: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
3: HK Movers,
2: local and long distance,
4: we also ship cars,
2: Kailor transport and moving services.
3: For service with a smile, give us a call.
2: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
3: 416-524-6704.
2: Visit 140 Advanced Boulevard, Unit Number 10, Brampton.
4: Long distance moving specialist.
2: HK Movers.
5: HK Movers.
6: Oh, haan bhai, ab badi highway da door pori hoi khadi hai, ki gal
7: aa? Accident ho gaya, car da tow truck hai, nu phone kar lagi aa.
6: Oh, tow truck chhad, main sidha karda Skydome Auto and Body Center walean nu. Naale main truck da body work vi karaun jana utthe.
8: एशियन फूड सेंटर दिया सारिया ही लोकेशन ते 26 जून तो 5 जुलाई तक लग चुकी है कैनेडा डे सेल। 4 पाउंड डीप बेसन 499, 900 ग्राम रेड लेबल टी 1299, 10 पाउंड इंडिया गेट प्रीमियम राइस 1299, ताज आटा 1199। इस तो इलावा ताजे फल फ्रूट, इंडिया वाले पांडे, दाला सब्जियां, मिठाइयां ते होर भी सब कुछ मिलता जी अंडर वन रूफ। विजिट एशियन फूड सेंटर, कॉल 416-740-3262।
9: जानकारियां ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम पंजाबी रंग दे विच अपने बिजनेस नु प्रमोट करन लई तुसी आज ही संपर्क कर सकते हो चमकौर सिंह नाल 416-662-1313 416-662-1313।

0: ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੀਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ।
1: Offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
2: HK Movers.
1: Local and long distance, we also ship cart, Kailor Transport and moving services.
2: For service with a smile, give us a call.
1: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
2: 416-524-6704.
1: Visit 140 Advance Boulevard, Unit No. 10, Brampton. Long distance moving specialist, HK Movers.
3: HK Movers.
4: हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की, यहाँ ये स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA, चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर। विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर। 9057900560 स्टीवंस फर्नीचर, 2575 स्टील्स एवेन्यू ईस्ट, ब्रैम्पटन।
1: HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all.
2: HK Movers.
1: Local and long distance, we also ship cart, Kailor Transport and moving services.
2: For service with a smile, give us a call.
1: Call Mr. Harminder 416-524-6704.
2: 416-524-6704.
1: Visit 140 Advance Boulevard, Unit No. 10, Brampton.
5: Long distance moving specialist,
1: HK Movers.
6: HK Movers.
7: Oh, haan bhai. अब बड़ी हाईवे ते डोर भोरी होई खड़ी है, की गल
8: आ? एक्सीडेंट हो गया कार दा, टो ट्रक आया नू फोन कर लगी आ।
7: ओ टो ट्रक छड्ड, मैं सीधा करदा स्काईडोम ऑटो एंड बॉडी सेंटर आले नू, नाले मैं ट्रक दा बॉडी वर्क भी कराउन जाना उते।
8: आहो, मैं सुनया स्काईडोम वाले सारी इंश्योरेंस कंपनियां नाल डील कर दिया, नाल ही हुण मेरी कार दा मिशन टेस्ट कर दो, नवे टायर पवा दियो, उधरों ब्यूटी पार्लर जाना, उधरों कार दा पंगा, आ छेती करो स्काईडोम वाले नू फोन करो 905-874-9878।
7: भाई घर वाली ब्यूटी पार्लर तो निकली होवे ते कार स्काईडोम तो सोने ते सुहागे वाली गल हुंदी जे।
9: जानकारियां ते मनोरंजन भरपूर प्रोग्राम पंजाबी रंग दे विच, अपने बिजनेस नु प्रमोट करन लई तुसी अज ही संपर्क कर सकदे हो चमकौर सिंह नाल, 416-662-1313, 416-662-1313।
10: ब्रैम्पटन दे विच इक्को एक नाम, नंबर 9 ऑटो सेल्स, पिछले 35 सालां तो किसी भी तरह दी इंपोर्टेड डोमेस्टिक हाइब्रिड कार, SUV, वैन नु बेस्ट प्राइस ते बाय करन लई और ग्रेट सर्विस लई कॉल करो 905-450-0009, यानी 905-450-0009, या विजिट करो साडी वेबसाइट 9autosales.ca।
11: हाँ जी, जरा एक वेबसाइट नोट करो, afcgrocery.com। ए है जी एशियन फूड सेंटर दी ब्रांड न्यू वेबसाइट, जित्थों तुसी इंडो कैनेडियन ग्रोसरी, मठियाईयां, ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, इंडिया वाले भांडे, सजावट दा समान, सारा कुछ जो स्टोर ते जाके देखना। हुण एशियन फूड सेंटर दी इस वेबसाइट ते देखो, $100 या इस तो ज्यादा दे ऑर्डर ते पाओ फ्री डिलीवरी इन ऑल GTA एरियाज, फ्री कर्बसाइड पिकअप अवेलेबल इन ऑल लोकेशंस ऑन सेम डे। विजिट afcgrocery.com।

0: हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की,
1: यहाँ ये
0: स्टीवंस फर्नीचर, एन अल्ट्रा मॉडर्न फर्नीचर डेस्टिनेशन इन GTA. चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर. विजिट इन स्टोर फॉर मच मोर. 9057900560. स्टीवंस फर्नीचर, 2575 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट ब्रैम्पटन.
2: HK Movers, home, offices, apartments.

0: मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-7333 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: महादेव को कहते सदाशिव निरंकारी।

इसलिए सत्य वचन दिव्यम सौरे निर्मितम पुरा द्वादशा क्रम जन्मस्तो दोषा नाशयते सदा जन्म लग्न स्थितान् दोषान् सर्वान् नाशयते प्रभु इति श्री ब्रह्मांड पुराणे ब्रह्म नारद संवादे शनि वज्र पंचम तव

रम कीलकम् मम अंगारक प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः नांगारकम् देवं रक्तांगं वरभूषणं जानुस्थं वाम हस्ताभ्यां जापे शुभरपाणिनं चतुर्भुजं मेषवाहं वर

ग्रह प्रेत ग्रह पिशाच ग्रह शाकिनी ग्रह डाकिनी ग्रह काकिनी ग्रह कामिनी ग्रह ब्रह्म ग्रह ब्रह्म राक्षस ग्रह चोर ग्रह बंधनाय एहि आगच्छ आवेशय मम हृदय प्रवेशय प्रवेशय स्फुर स्फुर प्रस्फुर प्रस्फुर सत्यम कथय कथय व्याघ्र मुखम बंधय बंधय सर्व मुखम बंधय बंधय राज मुखम बंधय बंधय सभा मुखम बंधय बंधय शत्रु मुखम बंधय बंधय सर्व मुखम बंधय बंधय लंका प्रसाद भंजन सर्वजनम मे वशमानय वशमानय श्रीं रीं क्लीं श्रीं सर्वानाकर्षय आकर्षय शत्रून्मर्दय मर्दय मारय मारय चूर्णय चूर्णय खे खे खे श्रीरामचन्द्राज्ञया प्रज्ञया मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु मम शत्रून् भस्मी कुरु कुरु स्वाहा ॐ राम ह्रीं ह्रों ह्रैं ह्रों ह्राः फट् श्री विचित्र वीर हनुमते मम सर्व शत्रून् भस्मी कुरु कुरु हर हर हूं फट् स्वाहा एकादश शतवारं जपित्वा सर्व शत्रून् वशमानयति नान्यथा इति श्री विचित्र वीर हनुमन् माला मन्त्राः सम्पूर्णम्।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है। आप समर को एंजॉय कर रहे हो। अभी जिनके बच्चे ग्रेजुएट हुए हैं उन सभी को उन बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। और अब अगर आप किसी भी किस्म की, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना है, आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए। फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए। 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कर सकते हो। और अब अगर आपने किसी किस्म का भी, आपको आपने कोलिजन का काम करवाना है, तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है, गोर रोड पे। और जानकारी के लिए टॉप चॉइस आप मास्टर कोलिजन डिपो .ca पे और मास्टर कोलिजन डिपो .com पे जाइए। और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए। लंदन के इलाके में रहते हैं, किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है तो आप मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइएगा। तो अब अगर आपने मूविंग करनी है तो HK मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। उनकी टीम्स हैं बहुत सारी, आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। और जानकारी के लिए अपना ट्रक बुक करने के लिए, मूविंग के लिए आज ही उनको कॉल कर लीजिए। 416-524-604-1652-46704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। तो अब आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा पंजाबी का गीत सुनाती हूँ।

0: फिल्म 1964 की थी, तो उसी का गाना आपको सुनाते हैं। आजकल बच्चों को छुट्टियां हो गई है तो जरूर आप घूमने निकलेंगे यहाँ जुलाई फर्स्ट पर कैनेडा डे की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: मुड़के नहीं हो जमना मामा कल पंजाब की शहर।

जीजा करता सानू जिसके देख निकाले बंटी लाल की बंटी बज गई जा वड़ा पटियाले मोटी बाग के बारा दरी देखा गया बिच बकाले तुरदा तुरदा पहुंच गया बाजार जुतियां वाले इधर मैं बरांदे वेके उधर वेके नाले देखी सारी दुनिया खुश एक दूजे ने जपिया पाके जोर भी कहते मौजे कहते मौजे ना पानी सुखिया हो गई शिकर दुपहर चलो सुखरा अगले शहर गड्डी चलती जाती आंदे जाते शहर मुड़के नहीं यमुना मामा कर पंजाब।

रुपया हम ध्याने ना कोई जाने ना पहचाने नू तो डिग पई देख के दाम दार तो बाटे जाते आकर उत्तर जे मैं डिग तमा के राग च जावा मर सती दौड़ के ओख गया बदा कोई जराबा कोई प्रेशर कोई बुने बुनियाना आगे अधीरत गुंजल दिखो तो मामा नैना नैना चले पुत्रा अगले शेर चलती जाती आंदे जाते शेर मुड़के नहीं जमना मामा कर पंजाब की सैर।

जी हाँ, एक बार फिर। और अगर आप हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमेशा हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, तो आप कॉल कर लीजिए और हमें अपना ऐड दे दीजिए अपने बिजनेस की। तो 6477737640 पे आप कॉल कर सकते हो। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब ये कनाडा डे आने वाला है, तो कनाडा की थोड़ी सी जो हिस्ट्री है वो आपके साथ थोड़ी आपको सारी वो आपको नहीं शायद पता होती हैं, पता भी होती हैं और कुछ याद करा दी जाती हैं। तो इसीलिए आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप किचनर वाटरलू गोल्फ में आप घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप नसीब थिंड को कॉल कीजिए 519-542-1260। तो अभी आपके लिए बहुत बढ़िया सारी गाना आपने मैंने चुना है मौसम के से, अब आपको गाने सुनाएंगे। तो कनाडा के भी मनाया जाएगा, तो क्या होगा वहाँ पे शहर में वेडनेसडे को है कनाडा डे, तो इस ग्राफ में भी बहुत सारी इवेंट होंगी। तो शाम भी शो फ्रॉम द कैपिटल विद परफॉर्मर्स फ्रॉम मॉक्टन विनीपेग, आर्टिस्ट विल जॉइन देयर वॉइस एंड देयर टू सेट अवर लव फॉर अवर कंट्री एंड द प्राइड ऑफ कॉलिंग इट होम कैनेडियन हेरिटेज। तो बहुत सारे जो सिंगर होंगे एडम बॉल्डविन और बहुत सारे दूसरे सिंगर भी आएंगे, फायरवर्क्स भी होगा। तो कनाडा डे रैप्स अप, फायरवर्क्स होंगे शाम को 8 बजे और इवनिंग शो होगा 8 से 10 बजे तक। शहरों में कनाडा डे फायरवर्क्स होंगे, आप अपने शहर में अपने वेबसाइट पे जाकर के देखिए सिटी वेबसाइट, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके शहर में क्या क्या इवेंट्स हो रही हैं वेडनेसडे को कनाडा डे। तो फिर पार्लियामेंट हिल पे होंगी 10 बजे सेरेमोनियल गार्ड बैंड, 11 AM द रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स पाइप्स एंड ड्रम्स, 11 फिर वही म्यूजिकल हॉर्सेस, 1:30 रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स एंड 2 PM to 3 PM 742 एयर कैडेट स्क्वाड्रन म्यूजिक प्रोग्राम्स, स्नोबर्ड्स एरियल शो। तो इसी तरह से ओटावा में तो इस तरह से सारा जो कनाडा डे की अलग अलग एक्टिविटीज होंगी। तो दूर से तो फिर अभी कनाडा डे में नियाग्रा फॉल में भी बहुत बढ़िया प्रोग्राम होंगे, फायरवर्क्स होंगे। तो आइए अब प्रोग्राम को ले लेते हैं। के लिए बहुत ही बढ़िया गीत मैंने चुना है, तो रुदर होना तो अच्छे मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो और जानकारी के लिए आप topchoiceelectronics.com पर जाइए, और आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का आउटडोर फर्नीचर चाहिए और बारबेक्यूज, खास करके आजकल समर है, तो आप topchoiceelectronics.com पर जाकर उनकी जानकारी लीजिए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड ब्रैम्पटन में और ग्वाल्फ में भी उनकी लोकेशन है। तो अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका शर्मी और मैं हूँ आपकी होशिरा। तो आप अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए, और इस हफ्ते आपको एक टीम वाली है कनाडा डे की, तो इसलिए आपको बहुत बहुत कनाडा डे की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे टू कनाडा। और ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा डे सेलिब्रेट्स द एनिवर्सरी ऑफ कैनेडियन कॉन्फेडरेशन विच अकर्ड ऑन July 1st 1867। ऑन दिस डे द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट जॉइंड द सेपरेट कॉलोनीज ऑफ नोवा स्कोशिया।
1: Get up to $5 cash purchase bonus on other road models. Sun.ca for details.

ऐसे मौसम में हमसे रूठी है, चैन लूटा है नींद लूटी है, ऐसे मौसम में हमसे है।

तेरे होठों पे हंसी आएगी, ये आएगी तेरे होठों पे हंसी आएगी। ध्यान हो या अकल हो ये होगा, ये बेरुखी मेहरबानी बनेगी। एक ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरे सपनों

0: नहीं, पहले तो लाज आती है, बाद में कोई मान जाती है।
1: जी हाँ, तो 1972 में कॉपीराइट हुआ था निर्माण का, तो मालिक की हाथों का बहुत बढ़िया मूवी था। हमने थिएटर में जाकर इंग्लैंड में देखी थी ये फिल्म, तो काफी सारी यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसी तरह आपने भी जरूर कहीं ना कहीं ये मूवी देखी होंगी, तो आपको वो सारा कुछ एक मूवी सी बन जाती है दिमाग में। तो अभी मैं बात कर रही थी कि हम कैनेडा डे क्यों मनाते हैं। कैनेडा डे सेलिब्रेट्स द एनिवर्सरी ऑफ कैनेडियन कॉन्फेडरेशन which occurred on July 1, 1867. On this day, the British North America Act joined the separate colonies of Nova Scotia, New Brunswick, and the province of Canada, now Ontario and Quebec, into a single country known as the Dominion of Canada. Though originally called the Dominion Day, the holiday was renamed Canada Day in 1982. Beyond the historic Michael Stones, Canadians celebrate the national holiday for several reasons. तो ये मेन वजह है जिसकी वजह से हम इस दिन को मनाते हैं। तो ये जानना हमारे लिए, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, अपना देश को भी हम जानते हैं, अपनी भाषा को, अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हैं। ये कनाडा एक ऐसा देश है यहाँ पे हम सभी को को कि अपने को हम मेंटेन कर सकें और आगे बढ़ा सकें। तो अब आपके लिए कल्याणपुर का गीत सुनाऊंगी, आप हमारे साथ जुड़ेगा, क्योंकि कोशिश करते हैं कि सभी सिंगर्स को हो चुके हैं उनको हम याद करते रहें, और प्रेजेंट जो इस वक्त हमारे साथ हैं उनकी भी हम कदर करें, उनको भी हम तो उनका भी हम कदर करें, उनके भी गाने हम सुनते हैं और सराहते हैं, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन जो लाइफ होती है। तो आजकल जैसे लोगों को गाने पसंद है वो अभी कैसे गाए जाते हैं, तो बहुत सारे नए से आ रहे हैं आगे, तो उनको अभी हम जरूर गाने सुनेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे। तो लेट्स गो टू दिस वेरी ब्यूटीफुल, मैं कोशिश करती हूँ आपको भी गाने सुनाऊं जो कम सुनने को मिलते हैं। तो आइए अब, अगर आपने कनाडा डे की आप अपनी सिटी में देखिए क्या क्या इवेंट्स होने वाली हैं।
2: सिर में शक्कर पारे मक्की बेसन पिस्ता बरसी मंदरी

0: ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਬੇਕਰੀ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ $4.75 ਪਰ ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਬੇਸਣ ਪਿਸਤਾ ਰਸਗੁੱਲੇ ਫੋਰ ਜਸਟ $5 ਪਰ ਪਾਉਂਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰਸ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਲ G26 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੇਡ ਟੌਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ। ਹੁਣ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ 2 ਇਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 1850 ਐਲਗਨ ਰੋਡ ਈਟੋਬੀਕੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-213-1115 ਤੇ 416-213-1165।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे क्या है कि उनका जो टर्नओवर है बहुत ज्यादा है, लोगों की लाइन लगी रहती है। वहाँ पे एक फायदा है आपको, वहाँ से आप कुछ भी खरीदेंगे आपको एकदम फ्रेश ही मिलेगा। तो आइए इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। अगर आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर लेना है, टीवी लेना है, बढ़िया आउटडोर फर्नीचर लेना है, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर बुक कीजिए 905-799-0045। मूव होना है तो आप मूविंग के लिए आप जा सकते हो, HK मूवर्स को कॉल कीजिएगा, वो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपका सामान मूव करते हैं। उनकी बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो आप अपना ट्रक बुक करने के लिए 416-524-7046-524-6704 पे आप HK मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। आपको कलीजन का काम करवाना है, लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं तो मास्टर कलीजन डिपो आपके लिए लंदन में गोर रोड पे मौजूद है। तो mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। तो आइए आपको सुनाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत, सुमन कल्याणपुर और रफी साहब का गाया हुआ।

जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने स्वादा पला। एक बार फिर से हैप्पी कनाडा डे, हैप्पी बर्थडे टू कनाडा। एंड आप सभी बुधवार को होगा तो छुट्टी होगी, आप खूब एंजॉय कीजिएगा अपने अपने शहर में जो भी कनाडा डे एक्टिविटीज होंगी। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने स्वादा पला। हैव अ वंडरफुल वीक एंड अ सेफ वन।

0: बनाए न होती खुद।
1: जी हाँ, तो अब आपके वो ये गीत सुनाते हैं, रात नए थोड़ा सा नए वक्त सुनाते हैं, तो आपसे विदा लेते, तो एंजॉय द सॉन्ग।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

सतगुर होए दयाल ते सरदा पूरिए, सतगुर होए दयाल न कबहू झूरिए, सतगुर होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक बार फिर खूबसूरत सवेर, चढ़दी कला वाली सवेर, खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां लैके। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधू।

क्या बात है जी। 905-673-3333 905-673-3337। अच्छा आनंद आ गया भाई। पंजाब बारे कुछ भी सुनने को मिल जाए ना तो सच्चियों मन बागो बाग हो जाता। 905-673-3333 905-673-3337। पर हुण अजकल आपां पंजाब नूं ना प्यार घट करते हैं तो पंजाब तो नुक्स ज़्यादा कढ़ते हैं। सो 905-673-3333 असी दुध की राखी बिले चुबाए हुए हैं। असी नुक्स तो कढ़ते हैं क्योंकि सानू पता कि साडे पंजाब नूं जिवें कहिंदे कि वाड़ खेत नूं खाण लग गई है। सो जिहड़ियां वाड़ां असी करके आए सी आउण तों पहलां ना वो लगता कि खेत नूं हुण खाण लग पईआं। मे बी इह वी इक कारण हो सकदा। 905-673-3333 पर अंदरों असी सुख ही मंगदे हां। अंदरों असी पंजाब नाल उन्ना ही गड़ोचे हां, उन्ना ही जुड़े हुए हैं। अच्छा गड़ोच, अच्छा ये पंजाबी दे ना असी पंजाब नूं तुसी जिंदा रखना ते पंजाबी नूं जिंदा रखना, पंजाबीयत नूं जिंदा रखना। ते ना मैं कई बार गल करदा हुंदा शाम वाले प्रोग्राम दे विच कि पंजाबी दे जिहड़े ठेठ शब्द आ ना वो असी बोलणों ही हट गए हां, जिहड़े सानूं साडे बजुर्गां ने जां साडे पिछोकड़ असी सभ्याचार ने सानूं जिहड़े पंजाबी दे ठेठ शब्द दित्ते आ। ठेठ मीनस ठेठ पंजाबी दे जिहड़े ओह जिवें आ हुण मैं गड़ुच कहता भी गड़ुच होया, ते मतलब ऐसे शब्द जिहड़े असी अजकल बोलदे ही नहीं क्योंकि नवीं जनरेशन उन्होंने तो भाई बोलने ही नहीं आ। तुसीं जे वध तों वध बोलिया करोगे, आपां वी इत्थे आ के मॉडर्न जे हो गए हाँ, आपां नूं ऐं लगदा कि हुण थोड़ी जी गल नूं ना इंग्लिश दे अक्षरां दे विच घुमा के कहीए ते मे बी कोई ऐं ही ना सोचे कि बहुत ही देसी आ। सो मैनूं नहीं लगता कि देसी होना कोई गुनाह आ। देसी होना तां साडी शान आ भाई, असी है देसी, वी आर प्राउड टू बी देसी। ते पंजाबी दे जिहड़े ठेठ शब्द आ इन्हें जी ना वो अपने अगे बच्चों नूं दोहतियां नूं पोतरियां नूं ये दस्या करो, अगे आप सज्जना मित्रां नाल बोलिया करो। सियाणियां गल्लां जिहड़ियां बजुर्गां दीआं सिखाईआं होईआं कहावतां बुझारतां अखा जिहड़ियां सीगीआं वो जिहड़े अखाण बजुर्गां दे वो कोशिश करिया करो कि बच्चों नूं दसदे रहो, कुछ तो दे के जाइए आपां बच्चों नूं ना। ये बहुत वड्डी गल आ, ये छोटी नहीं है कि असी देखो पंजाबी ने अगे जाके मर जाना है जे यही हाल रहा ना, जे आप मॉडर्न होंदे गए क्योंकि नवीं जनरेशन साडियां आने वाली पीढ़ियां वो तो बिल्कुल जी ठेठ पंजाबी तो बहुत दूर आ, फिर उन्नी क बोलिया करनगे बस, वो तो माँ नूं भी मॉम बनाता उन्होंने, तो इदा ही फिर पंजाबी का भी हाल यही चीज़ होना। तो कितों आप जिहड़ियां हुण खुरकना कांड खुरकना आप अजकल गल ही नहीं करते भाई। साडे बजुर्गों तो साडे दादे दादियां तुसीं सुनिया कि भई ढूई भी कहिंदे आ, वाण दा मंजा, ऐसियां चीज़ां ऐसियां गल्लां, कंधोली हारे आरने हल सुहागे, ये चीज़ां ना बच्चों भी दस्या करो कि वेखो ये साडा इतिहास रहा है, ये साडी सभ्याचार रहा, तो पंजाबी दे शब्दां दे नाल जिहड़े निक्कियां निक्कियां गल्लां तुसीं बेशक तुहानू याद आ तुसीं आप करदे होंगे, पर बच्चों जरूर इत्थे तुहाडे जिहड़े बच्चे आ उन्होंने जरूर ये चीज़ें दस्या करो। 905-673-3333 नाल दी नाल हरप्रीत सैनी होना का मैसेज थोड़ा दे दिए टॉप चॉइस इंश्योरेंस तो परिवारों की सुरक्षा फाइनैशियल प्लानिंग इंश्योरेंस की सलाह देंगे ने। लाइफ इंश्योरेंस करवानी तुसीं क्रिटिकल इलनेस डिसबिलिटी सुपरवीजा हैल्थ इंश्योरेंस डेंटल इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए हरप्रीत सैनी उन्होंने कॉल कर लियो 416-817-6600 हरप्रीत सैनी जी।

905-673-3337 बिल्कुल ही रीसा हो ही नहीं सकती हूँ। सो हरमन बत्ता जी ने तुसी याद रखना मॉर्गेज ब्रोकर ने, ते तुसी मॉर्गेज लैन दे विच तुहानू परेशानी आ रही है, फस्ट टाइम होम बायर हो, रीन्यूअल करवानी है, कार खरीदना है, प्री अपरूवल लैनी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लई मॉर्गेज नहीं लभ रही, तो हरमन बत्ता मॉर्गेज ब्रोकर नू याद रखो 647-685-9000 647-685-9000। घर लै लिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी लै ली है, तो फिर वो अपलायंसिस भी रखने हैं, तो अपलायंस जंक्शन नू याद रखना, फिर तुसी सीधी गड्डी घुमानी है हरमन बत्ता तो बाद अपलायंस जंक्शन पर जाके खड़ी कर देनी है। छोटे वड्डे सारे अपलायंसिस तुहानू इक्को स्टोर थलों मिल जाने, दो लोकेशन तो सर्व करते हैं, 905-450-0054 905-450-0054 अपलायंस जंक्शन।

0: खुशबू पंजाब दा रंग रंग पंजाबी अपनियां दा प्यार सच्चे जज्बातां दा इकरार
1: तुसी सुन रहे हो रेडियो रंग पंजाबी।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection call to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दंगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी एक कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग हरजिंदर गिल ते छड़ दवो। तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, helping you to fulfill your real estate plans.
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, द लार्जेस्ट इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चेन इन कनाडा। फाइंड आउट मोर एट rajdhanisweets.ca।
2: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 जी मीडिया ग्रुप।
3: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का हार्दिक निघा स्वागत। उम्मीद करदा कि बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे जी, चढ़दी कला च रहो। तुसीं साडी दिली अरदास हमेशा ही हुंदी है। जिहड़े दोस्त साडे नाल हुणे जुड़े ने उहनां नूं भी निघी जी आखदे, क्योंकि अपना साथ है। एतवार वाले दिन रामस पंजाबी वीकेंड शो दे नाल 12 बजे बन जांदा है। 12 to 1 रामस पंजाबी ते 1 to 2 तुसीं सुणदे हो प्रोग्राम नजरिया। मैं थोड़ा होस्ट मनजीत सिंह गिल, और इन्हां प्रोग्राम्स दे दौरान साडे नाल स्टूडियो च गलबात करन वास्ते टैलीफोन नंबर हुंदे ने 416-233-7368 जां फिर 8297-416-233-7368 जां फिर 8297 ते अपनी गलबात हमेशा ही हो सकदी हुंदी है। और साडी गलबात दा हिस्सा तुहाडे तक पहुँचाउण दे विच मदद ऑप्टिकल वन दे वल्लों मिलदी है। 905-455-0752 उहनां दा टैलीफोन नंबर है। पंजाबी वन नेचर 416-937-2061 एयरपोर्ट नेसा 905-791-4900 ते गल तुसीं कर सकदे हो। किंग टोइंग 416-677-2222 टैलीफोन नंबर है। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-688-1200 ट्राई सिटी प्रोफेशनल रियल्टी ब्रोकरेज तो अवतार सिंह जी बडियाल 416-464-2067 ते गल की जा सकती है। ड्रीम होम अपलायंसिज 905-805-3000 टैलीफोन नंबर है जी। तो प्रीमियम आटो रिपेयर एंड यूज कार सेल्स तो गुरप्रीत ढाडा जी 416-747-4800 ते तुसीं गल कर सकते हो। गिल स्वीट फैक्टरी ओवरऑल जे कैनेडा भर की गल करिए तो 6 लोकेशनस तो सर्विस देंदे ने, लेकिन साढ़े GTA दे विच 4 लोकेशनस ने जी उन्हां दियां। तुसीं हैड ऑफिस ते कॉल करके जानकारी हमेशा ले लैनी है। 905-799-2616 टैलीफोन नंबर है। 9057992616 गिल स्वीट फैक्टरी वालों का टैलीफोन नंबर है। बाबा नज़मी होरां नूं फिर याद करदे हां जी, उह कहिंदे शीशे उत्ते धूड़ां जमियां कंधां झाड़ी जांदे ने, जल्दां सांभ रहे ने झल्ले वरके पाड़ी जांदे ने, उहनां दा वी तुईओ रब्बे इहदा अज जवाब तां दे, ईदां वाले दिन वी जिहड़े करन दिहाड़ी जांदे ने, जिहनां दे गल लीरां पईआं उहनां वल्ले तकदे नहीं, ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਲੇ ਜੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਰੇਗਾ ਢਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਬਦਲੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਮਲੇ ਸਿਆਈਆਂ ਹੱਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਫੁੱਲ ਤਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਓਏ ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਈਏ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।

0: लेनी हुए 2000 तो शुरू होके 2199 डॉलर इस्लामाबाद काची लाहौर के बिच रिटर्न टिकट मिल जाती है। ये नहीं है हरी साहब कि आप कला इंडिया या पाकिस्तान कर रहे हैं, पर राउंड द वर्ल्ड जिथे तुम उंगल रखोगे तुहाडे लई उहो जिहा इंतजाम करके देवांगे बेस्ट प्राइस दे विच कटारिया टूर एंड ट्रैवल जिहड़ा कि सत्तों दिन दोनों ऑफिस डेयरी एंड एयरपोर्ट से और दूसरा ऑफिस हैगा जी गौर एंड मेजर से ब्रामटन दे विच सवेरे 8 बजे तो लैके 9 रात के 11 बजे तक ऑन कॉल होंगे तो सवेरे 9:30 बजे तो लैके 7 बजे तक असी ऑन उसे ऑन लोकेशन से होंगे जो मर्जी साढ़े दोनों ऑफिसों के सत्तों दिन विजिट कर सकते हो। वेखो जी उस तो बाद तुहानू पता ट्रैवल रिलेटड कोई भी काम हो गया तुहानू वीजे की लोड़ है इंडिया का वीजा चाहिए इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करवाना चाहे OCI अपडेट करवानी है या रिन्यू करवानी पेपर वर्क करवाना या PCC लेनी है जां किसी अमेरिका का वीजा लेना तो फास्ट डेटा लेनी है वह भी साढ़े को इंतजाम है जी। जे किसी ने मिडल ईस्ट जाना है चाहे नेपाल जाना चाइना जाना कितने भी वर्ल्ड वाइड जाना हो PR कार्ड एक्सपायर हो गया तो सिटीजन के पेपर बनाने हैं एको शर्त थे कटारिया टूर एंड ट्रैवल का सत्तों दिन खोले ये सारिया चीजा करके प्लीज इंश्योरेंस भी जरूर पूछ लिया करो बहुत फायदेमंद चीज है क्योंकि हरी साहब अजकल टिकटा से बहुत कुछ है जरा टिकटा नॉन रिफंडेबल 90% तो 95% नॉन रिफंडेबल टिकटा भी पैकेजेस भी होंगे है इंश्योरेंस जरूर बाय कराया करो नाल जी मेडिकल भी होंगी कैंसलेशन भी होंगी है उस तो बाद विजिटर टू कनेडा भी तो सुपर वीजा इंश्योरेंस भी है जिहड़ा कि सीधा कंपनियां डीलां करदियां इंश्योरेंस कंपनियां उन्होंने नाल जे भी लोड होवे तुहानू ते कॉल कर लो नंबर 1-905-678-1205-678-1200
1: 905-678-1200 मुख दी गल 100 हथ रस्सा सिरे ते गंढ चाहे तुहानू सस्तियां टिकटां दे नाल वधिया सर्विस चाहीदी आ ट्रैवल पैकेज चाहिए ने ट्रैवल इंश्योरेंस वीजे या फिर डॉक्यूमेंटेशन का कोई काम कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल तुहाडी हैल्प करनगे 905-678-1200 905-678-1200 ते गलबात की जा सकती है। बहुत शुक्रिया कटारिया साहब धन्यवाद जी थैंक यू वेरी मच जी। तो कनेडा डे स्पैशल प्रोग्राम अज का ये किया जा रहा है जिथे कि साढ़े स्टूडियो पहुंचे हुए हैं मैपल क्लीनिंग तो ढींसा साहब उत्थे ही मोज ब्लाइंड तो मानसा पहुंचे हुए हैं जो कि अपने परद्या ते क्लीनिंग संबंधी जानकारी डीलां तुहाडे तक सांझे कर रहे हैं। ग्रैंड होम फर्नीचर तो सुखबाई जी डीलां लेके हाजिर होणगे ते हुण वारी आ ब्रैम्पटन TV एंड अपलायंस क्योंकि अपलायंस एक अजिही चीज़ है जिथे बंदा सोचता कि 8,000, 10,000, 15,000 डिपेंड अपॉन हरेक बजट लिए अपलायंस ने चाहे तुसी जो भी तुहाडा बजट आ वह बजट दे विच तुहानू अपलायंस मिल जाणगे बिल्टन अपलायंस चाहिए आ जां फिर तुहानू सिंगल अपलायंस चाहिए आ टैलीविजन चाहिए ने ब्रैम्पटन TV एंड अपलायंस ते कल जदों सुल्तान जी ने 199 की डील अनाउंस की ना 4 बारी रेडियो सुनना पिया सानू ते कि अज भी स्टॉक हैगा इनवेंटरी हैगी आ सुल्तान जी तो जानते सुल्तान जी जी आयां नू सति श्री अकाल वेलकम।
2: थैंक यू वेरी मच जी सत श्री अकाल ते ब्रैम्पटन TV एंड अपलायंसेस ते कैनेडा डे स्पेशल सेल है जी और भुल्लर साहब तुसी कल दी गल कीती है ते ओ जिहड़ा डील है $400 वाला 40 इंच दा TV है जिहड़ा असी 199 कैनेडा डे स्पेशल सेल ते दे रहे हैं। कोई भी कस्टमर 40 इंच लेना चाहुंदे 199 च सिर्फ 2 या 3 TV स्टॉक रह गए होंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यह 40 इंच TV 199 का लिया जा सकता है। जो TV सैक्शन की गल करते हैं तो सोनी ब्रेविया मॉडल की गल करते हैं सोनी ब्रेविया 3 ये लेटेस्ट अपडेटेड टेक्नोलॉजी है सोनी ब्रेविया 3 ट्राइलुमिनस पैनल टेक्नोलॉजी के नाल X1 प्रोसैसर के नाल मिनी LED च नवी अपडेटेड टेक्नोलॉजी मिल रही है जिहड़ी कि $2300 तो सोनी कंपनी ने सिर्फ कैनेडा डे स्पेशल से 1599 का 85 इंच तुहाडे लई ऑफर किया लिमिटेड इनवेंटरी इन स्टॉक है जी ते 1599 भी तुसी 6 महीने च पे करना है कोई इंटरेस्ट नहीं है 905-450-2828 नंबर है। वैसे तो कैनेडा डे दे उपर एवरी ऑल साइज ऑफ TV दे उपर तुसी एटलीस्ट मिनिमम 200 तो लाके $600 तक सेव करोगे। फॉर एग्जाम्पल 55 इंच लेना $700 वाला 399 च मिलना है $400 55 इंच सेव करना है 399 भी तुसी 6 महीने च पे कर सकते हो कोई इंटरेस्ट नहीं है। 65 इंच की गल करिए भी तुहानू $1000 वाला 699 का मिलना है ये भी तुहानू एटलीस्ट मिनीम $400 सेव हो रहे हैं। जे 75 इंच की गल करिए $1200 वाला ਇਹ

0: हाँ हरमन कौरी,
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली हो लग गई हां।
0: हाँ
1: तू एवं कर जेडे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंदे,
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हां ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਊਗੀ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ।
0: ਓਹੋ
1: ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ,
0: मतलब ये कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या का चीज चाहिए है?
1: हाँ।
0: फार्मस चाहिए है, बैग चाहिए,
1: हाँ।
0: दस्ताने चाहिए, कोटी। ऐसे मेरी गल सुनो,
1: हाँ।
0: ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की माँ भी करूंगी फिर।
1: भाई साहब जब बच्चे की माँ नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना
0: है? यार किद्दां दी माँ हो गई जेड़ा अपने बच्चे का चा नहीं करन दी ते ओ मेरे का ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे।
1: हेलो
0: मैडम तू ना बीबी दी साइड ना जा, मेरे वाले प्रोफेशन ते आ। जवाक पाड़ दे बाद अगले पैसे ना देने फिर कौन जिम्मेवार?
1: सिर जरूर पाड़ सकदा, बाकी गल्लां दी गल्लां।
2: ए मेरे रब जी, मेरा बिजनेस नहीं जे चलता। बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख ले ने, कोई गल नहीं बनती। बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा, $50 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बाबा जी मेरा बिजनेस चला दियो।
3: ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਵ ਤਾਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਐਡ ਚਲਾ। ਬਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਫੋਨ ਕਰ 416-677-0609 416-677-0609।

0: चुटकला।
1: मैनू एक गल दस, तू अपनी पहली गर्लफ्रेंड का छड़ दी?
2: ओया पागल सीगी।
1: क्यों?
2: ओनू मैं फोन करना, उन्हें फोन चुकने की बजाय बादरी जी ने रिंगटोन ते नची जाना।

वेरी गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, की हाल चाल है जी? उम्मीद है सब ठीक ठाक हो गए। सुनहरे जे मौसम दे विच सुनहरी जी आवाज दे नाल, सुनहरे जे प्रोग्राम दे नाल स्वागत स्वागत स्वागत, वी वेलकम यू ऑल।

बाबा जी बिल्कुल बिल्कुल जरूर, जुत्ती ते सारे तारे की सारे अंबरां दे विच जिन्ने भी प्लैनेट्स ने भी ला के ला दियो जरूर। प्यार मोहब्बत दे विच बंदा की कुछ नहीं कर सकता है ना, जिवें प्यार मोहब्बत दियां तंदा जिहड़ियां थोड़े नाल जुड़ियां होईयां ने ओह दिन ब दिन जदों मजबूत हुंदियां ने ते सानूं भी खिच पैंदी है कि असीं भी मुड़ के थोड़े कोल जाइए ते थोड़े लई कुछ ना कुछ नवेकला लैके आईए। बिल्कुल अज लाइव ऑन लोकेशन साडी टीम पहुंची हुई है जी, सिद्धू साहब खुद पहुंचे हुए ने ग्रांड होम फर्नीचर ते। लोकेशन है 6685 टॉमकिन रोड, उत्थे पहुंचो जी। ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड सेल लगी हुई है, काफ़ी सारी बचत की जा सकती है। लाइव ऑन लोकेशन का फायदा यह होंगे कि पॉपअप लोकेशन जीडिया यह होंदिया ने टाइम बीइंग वास्ते यही जीडिया सेल्ला लगदिया ने, उसका फायदा यही है कि कुछ चंद पैसे जड़े ने बच सकते हैं, वो फ्री गिफ्ट जड़े ने ज़्यादा मिल जाते हैं। सो जाके अज का दिन वधिया है जी, जिवें सिद्धू साहब दस रहे कि तुम पिकनिक वास्ते तैयारी खिंची हुई है तो जाते लंघते बढ़ते उधरले पासे गेड़ा जरूर लगा के आयो, की पता पसंद आ जाता कुछ तो उसके गिफ्ट जड़े ने वाह कमाल थोन मिल सकते हैं जी। सो अपना लक जड़ा है अजमाया जा सकता है अज ग्रैंड फर्नीचर की इस सेल से। अगला नंबर थोड़ा देन जा रही है जी मनु शर्मा होना का, कि थोनों पता है कि ओंटारियो के ऑटो इंश्योरेंस में नवे चेंजेस जड़े ने आ रहे हैं। जुलाई तो बाद अपनी पॉलिसी रिन्यू कराने वाले ड्राइवर्स नू एक्सीडेंट बेनीफिट्स ते अदर कवरेज लई नवे फैसले न्यू डिसीजनस करने पास करने पै सकते ने। सो बट द क्वेश्चन इज कि तुसी समझदे हो कि ए बदलाव जड़ा है ए चेंज थोड़े ते थोड़ी फैमिली दी सेफ्टी उत्ते की असर कर सकता है जी। सिर्फ घट प्रीमियम देख के डिसीजन ना लियो, सही कवरेज होना उस तो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जे थोड़ी ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल आने वाली है या तुसी अपने घर की रिन्यूअल चाहते हो, बिजनेस इंश्योरेंस ले बैटर कवरेज चाहते हो, रेट्स बहुत अच्छे लग रहे हो, तो मनु शर्मा होर का नंबर तुसी जरूर लिख के रखो 289-952-9532 is the number. इस नंबर ते कॉल की जा सकती है, मनु शर्मा होर गलबात की जा सकती है। लो जी ए एंड जे ऑटोमोटिव रिपेयर का नंबर भी थोड़ा दे दें, कहते कार रिपेयर करते हैं असी तो ऐसी नवी नवेकली कार बना दें तो पता ही नहीं चलता, प्रोवाइड कर रहे हैं नवे समर टायर्स, चेंज करते हैं टायर्स, व्हील अलाइनमेंट कराने हो, हर तरह का सस्पेंशन का काम करना हो, इंजन का काम करा हो, ब्रेकों का काम करा हो, एग्जॉस्ट का काम करा हो, ऑयल चेंज करा हो, रस्ट प्रूफ करानी हो गड्डी, तो बस फिर ए एंड जे ऑटोमोटिव रिपेयर। अच्छा जी जे इन्हों के कोल जाते हो तो एक प्लस पॉइंट यह है कि दे स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस हिंदी एंड पंजाबी, सो थोड़ा कितने भी ऑड नहीं लगेगा कि हाँ जी मैं हूँ उत्थे जाके किमें बोलांगा कि मेरे मेरी गड्डी ए जिहड़ा है दिक्कत आ रही है। कई बार सानू लफ्ज लभदे नहीं है ना तो औखा हो जाता, फिर बंदा कहिंदा छड्ड परा मैं इत्थे नहीं जाऊँगा मैं कितने होर जाना, तो सारे बेनीफिट्स छड्ड दिंदा। सो ए एंड जे ऑटोमोटिव रिपेयर तो तुसीं गेड़ा जरूर लगायो, 91 हेली रोड बोल्टन, हाईवे 50 ते मेफील्ड का इंटरसैक्शन है जी, होम डिपो दे लागी है, नंबर नोट कर लेने 289-503-6726, नाल दी नाल दूजा नंबर 905-857-7596 इज द नंबर, इस नंबर ते कॉल करना बिल्कुल भी ना भुलियो।

0: सकती है। हेलो जी, सत श्री अकाल। 1695।
1: हाँ जी बाजी, की हाल जी?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, तुसी सुनाओ किधर दी तैयारी?
1: टाइम बदले है, मैं तो रात 9 बजे संडे नु इंतजार करता हूं।
0: आए हाय, बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक, तुसी सुनाओ।
1: मुमकिन, अल्हम्दुलिल्लाह, मुमकिन होवे ना ते नूर जाना जाना एक ही है। चांदनी राते सब जब सोए,
0: चांदनी राते, चांदनी राते।
1: अच्छा ये पता की पिछले साल सेंचुरी ऑफ द सॉन्ग सी पाकिस्तानी फिल्म विच।
0: मौसम खिड़दा जा रहा है, देखिया है ड्राइवेज क्लीन हो रहे ने, सारे काम जो चेते आ रहे ने कि कोई भी काम कराना है तो मौसम जो अच्छा हो धुप्पां लग जान वधिया तो फिर सिटी परमिट्स ओमकार होम्स पॉल ग्रेवाल रेनोवेशन काम करके देंदे ने जी, इंक्लूडिंग द ड्रॉइंग्स, गार्डन सुइट्स बनवाने होन, लीगल बेसमेंट बनानी होवे, अपार्टमेंट स्पेशलिस्ट ने है कंप्लीट कर चुके ने ओवर 20 गार्डन सुइट्स इन 2025, बिल्ड कर देने कस्टम होम्स, कोई भी तरह का कमर्शियल जॉब्स, ऑफिस, रेस्टोरेंट्स, स्पेशल डिस्काउंट्स ने होम रेनोवेशंस ते इंक्लूडिंग $5,000 ते जे इफ यू बुक योर लीगल बेसमेंट या गार्डन सुइट इन द मंथ ऑफ वैसे हूँ पूछे इन द मंथ ऑफ केड़े क्योंकि मई का लिखा हुआ है पर आई एम श्योर कि हूँ भी कंटिन्यू कर रहे होंगे इस ऑफर के नाल। 416-817-3600 नंबर तुम फिर दोबारा नोट करो, 416-817-3600 नंबर है जी ओंकार होम्स तो पॉल ग्रेवाल होरां दा, जरूर कॉल करके इन्हां तो वधेरे जानकारी लेती जा सकती है। अच्छा जी, कैनेडा डे सेल, कैनेडा डे बहुत अहमियत रखता है साढ़े वास्ते, जिन्हें भी असं कनेडियंस है साढ़े वास्ते ब्रैम्पटन जिहड़ा है वो लैके आया जी कैनेडा डे की सैलीब्रेशन चिंगूजी पार्क के विच। सो सैलीब्रेट करो कैनेडा डे इन ब्रैम्पटन विद कंट्री स्टार ली ब्राइस कंट्री बैंड इमरसन ड्राइव चिंगूजी पार्क से। लाइव कंट्री म्यूजिक होएगा, फैमिली फ्रेंडली प्रोग्रामिंग होएगी चिंगूजी पार्क के विच। July 1st जिहड़ा इंजॉयमेंट की जा सकती है, सिर्फ सिक्योरिटी मेजर्स मद्देनजर रखते हुए इन्होंने यह उपराला कर रहे हैं जी। ये थोड़े वास्ते ब्रैम्पटन्स एनुअल कैनेडा डे सैलीब्रेशन जी है चिंगूजी पार्क के वेडनेसडे July 1st हो जा रही है। अपनी फैमिलीज में लेके आओ, कम्युनिटीज पहुंचन, टूगैदर वील हैव फुल डे ऑफ लाइव एंटरटेनमेंट, फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज, फूड, फायरवर्क, एवरीथिंग विल बी देयर। लेकिन सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, सो टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी सेफ्टी ते सिक्योरिटी नू। सो 12 बजे तो लेके राती 10 बजे तक, सो दोपहर 12 बजे तो लेके रात 10 बजे तक जी है एंटरटेनमेंट रहेगा एंड एक्टिविटीज होनगिया, फूड दे ट्रक्स लगे होंगे, फैमिली फ्रेंडली एक्टिविटीज होनगिया, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स अपने बच्चों नाल लेके जाओ, बिकॉज नाउ हूँ तो उन्होंने एनर्जी जी है डबल ट्रिपल होएगी क्योंकि छुट्टियां हो चुकिया ने। इट्स एन ऑफ फॉर दैम फॉर अ प्रीटी लोंग टाइम, सो एंजॉय कराओ उन्होंने ऐसी थावां ते लैके जाके, उन्होंने एनर्जी जी है ना थोड़ी जी आप बर्न आउट कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा जा थक जाए, नहीं तो थकनगे नहीं। सो चिंगूजी पार्क 9050 ब्रमली रोड ब्रैम्पटन विखे लोकेटेड है। सो July 1st कैनेडा डे सेल दे नाल नाल जिथे जिथे सेल्स लगियां ने उतों फायदा उठाओ ते नाल दी नाल सैलीब्रेशन भी करो। फिलहाल असीं दस दिए कि कैनेडा डे सेल दी जिहड़ी है शुरुआत जिहड़ी है कीती है कैनेडा डे सेल दी ग्रैंड होम फर्नीचर ने। सो 6685 टोंकन रोड मिसिसागा, डेरी ते टोंकन दा इंटरसेक्शन है जी, इत्थे लगी हुई है कैनेडा डे सेल। सो बिगेस्ट सेल ऑफ द ईयर कैनेडा डे, असी उड़ीकते हैं जी कि सेल लगे, कुछ ना कुछ बचत होए साडी, इन्हां दिनां दी सानू उड़ीक बहुत ज्यादा रहिंदी है। सो आ गया जी वो दिन, डिजाइनर फर्नीचर लोएस्ट प्राइसिस ते फ्री अपलायंसिस नाल दिते जा रहे ने एज गिफ्ट्स। माइक्रोवेव अनाउंस होया सी हुणे एंड पहलां भी बहुत सारे ऑफर्स जिहड़े ने दे चुके ने पिछले लिंक दे विच, तो हुण छेती छेती फिर दोबारा एक लिंक लवांगे ते छेती छेती असी अपलायंसिस बारे जानकारी लवांगे कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि क ਕੋਈ ਡਾਇਨਿੰਗ ਸੈੱਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਸੈੱਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਾਕਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਫਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ। ਸੋ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡ ਹੋਮ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਰਨੀਚਰ ਆਈਟਮਸ 'ਤੇ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 6472620006472620000 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸੇਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਲ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੇਟਰ ਔਨ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੋ 6472620000 ਨੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਦੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ।

0: जय माता दी वेलकम
1: टी
0: चलो एम 530। उम्मीद करते हाँ सारे लिसनर बहुत वधिया होंगे ते चढ़दी कला विच होंगे। रब मेहर बनाई रखे सब हसदे वसदे रहन। ते जी 7 वज चुके हैं असी अपना प्रोग्राम करन लगे हैं शुरू। साडे प्रोग्राम दा नाम है जी तारे सितारे। अपने लिसनर्स नूं दस दिए कि असी हर संडे इस प्रोग्राम नूं 7 बजे तो लैके 8 बजे तक हाजिर हुंने हाँ। जिमें कि नाम तो ही पता चलता है तारे सितारे साडा प्रोग्राम तुहाडी किस्मत कुंडली ग्रहां नाल जुड़िया होया प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम दे विच असी एस्ट्रोलॉजी नाल रिलेटिड गलबात करदे हाँ।